0: What's your problem?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

0: राजा तू बहुत अकड़ रहा है ना, नहीं मान रहा है ना, पक्का पक्का नहीं मान रहा?
1: हाँ नहीं मान रहा हूँ।
0: ठीक है तो मैं सारी रात यही रहूंगी, लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
1: Get lost.
0: पक्का नहीं मान रहा?
1: हाँ नहीं मान रहा, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
0: राजा। ठीक है तो तब आना जब मैं

0: Hey, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।